0: मुख्तार जी, कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

बड़ी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0352656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0352266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। तो चले यहां से प्रोग्राम में पहला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो हर सुबह आप सभी सुन वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में सुनते ही

0: रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, भजन यात्रा प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। तो चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सुंदर सा भजन होगा पंडित गजेंद्र शर्मा जी की आवाज में।
1: मेरे सत्संग प्रेमी सज्जनों, अगर निश्चित सुबह और शाम को अगर एक बार भगवान का भजन सुमरण करेगा तो निश्चित रूप से 84 के आवागमन से छूट जाएगा। और इसी भजन में दर्शाया गया है, आइए सुनते हैं

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हरिओम शरण जी की आवाज में, हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुन

हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार बुधराम की आवाज में एक सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा हर सुबह की तरह आज सुबह भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर।

रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा का प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

ऑफ प्रदीप के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: इसमें ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना
1: धरती।
0: और सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

दे सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 9:05 व्यतीत हो चुका है और जून का यही मतलब होते हैं कि गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी को, सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। उसके बाद पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो चले आप सभी सुनने वालों के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चले यहां से हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। रविवार का दिन 26 तारीख जुलाई 9:06 व्यतीत हो चुका है।

आशिक फिल्म का नाम द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और अबकी बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम है अंदाज़।

का गीत पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। लाइव की सर ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। चले फिल्म डाक की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। 1952 का फिल्म, फिल्म का नाम डाक, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं। लता मंगेशकर के बाद मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। 1963 का फिल्म, फिल्म का नाम गहरा दाग। आज उड़ता हुआ एक पंछी मरहूम

शाम गहरा डाक आज उड़ता हुआ एक पंछी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में ताकि हर एक रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुने। ऐसे रोजाना हजारों हजारों सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, फिर भी हर एक को खबर करते ही रहना रेडियो SBS के बारे में। गाना जो अबकी बार पेश होगा लता मंगेशकर की आवाज में, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ तमाम खबरें तमाम रिक्लाम जो आपको देना है हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं टेलीफोन नंबर 03265656064 uur per dag ये टेलीफोन नंबर आप सभी के लिए बराबर होता है जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहेंगे। अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है घराना। उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

साया जहां पर भी हो सजना। पाकिस्तानी मूवी घराना का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है कन्हैया, उसी फिल्म का ये गाना सुनते ही रहना।

मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नक में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा और किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में, और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम ताज महल।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था ताज महल, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब की बार एक गाना फिल्म अपना देश उसी फिल्म से बस पेश किया जा रहा है, द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा भोसले की आवाज में। आशा भोसले की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म अपना देश, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आशा जी के बाद लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम आप आए बाहर आए।

इसकी आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना।
1: किशोर कुमार के आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कटी पतंग। चले अब की बार फिर से किशोर कुमार होगा, लेकिन किशोर कुमार के साथ लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।
0: पूरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरी।

किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार की आवाज में अब की बार फिल्म नजराना का गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था नजराना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी उत्तराखंड से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

घर जो पीस के गए आंखों आंखों में बात होने दो। काफी खूबसूरत गाना पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना और बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में एक और पुरानी फिल्म का गीत आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी फिल्म द ट्रेन का गीत पेश किया जा रहा है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।

0: ट्रेन फिल्म का गीत पेश किए गए आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किए गए हैं। कल सोमवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हमारे सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और स्टूडियो की ओर तार किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद और प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आपको भी खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार बस पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले

और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनवालो रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शहरी तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

कुमार सानू जी की आवाज में दानव उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनवाओं की सेवा में। सुन वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60। कुमार सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

उसमें गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वाली सेवा में एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट में इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में होगा

आप सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। देनहाग शहर से समस्त दुखित परिवार सतीश और हरप्रीत राम प्रसाद और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वुंसदाग 22 जुली बुधवार 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त 79 साल नेखनन 57 साल की आयु में सतीश राम प्रसाद के फुआ, हरप्रीत राम प्रसाद के फुआ सास, दो लड़कन सोहम और स्वर के आजी देनहाग खैस्त्रन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर के पत्नी थे। अर्थी सोमवार 27 तारीख जुलाई मानदाग 27 जुली स्मेडक्स ओम क्वाट फोर द्री क्रेमेटोरियम इपनहोफ होफलान नंबर 18 डेल्फ शहर में दाग क्रिया की जाएगी। आरनहेम शहर से समस्त दुखित परिवार राम प्रसाद और बधाई और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। वुंसदाग 22 जुली वुंसदाग 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त नेखनन 79 साल की आयु में सुदेश बधाई के फुआ सास, मीला राम प्रसाद के फुआ, अंजलिना बधाई के नानी, अश्विन भान सिंह के ननिया सास, देनहाग खैस्त्रन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर की पत्नी थी। अर्थी मानदाग 27 जुली सोमवार 27 तारीख जुलाई स्मेडक्स ओम क्वाट फोर द्री क्रेमेटोरियम इपनहोफ होफलान नंबर 18 देनहाग शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 9649 84 44 44 और दूसरा तार की नंबर है 9685 28 30 01। एर इस गेन बैठक अन हाउस निवास स्थान पर बैठक नहीं है। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई।

0: सुनने वालों, रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। मृत्यु समाचार जो है आज शाम में ठीक 6 के वक्त फिर से प्रोग्राम में पुकारा जाएगा।
1: Voor alle informatie is Radio SBS 24 uur bereikbaar op telefoon 030 265 65 60.

दो दिन की जिंदगी है और दो दिन का मेला, आए भी अकेला। बारह बजकर प्रोग्राम में 13 मिनट व्यतीत हो चुका है, 13 मिनट ओवर 12। सुनवालो हर एक काम काज के लिए आपकी फरमाइश हुआ, इश्तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, आपकी घर पर कोई भी दुख है, गमी है, आप मृत्यु समाचार मौत की खबर देना चाहेंगे, तो हमेशा हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाख बराए बार होता है 0302656560। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, या तो उसी वेबसाइट की जरिए भी हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। हमारा मेल और ऐप जो है रेडियो SBS का ऐप 24 पर दाख बराए बार भी होते हैं। सभी सुनने वालों को शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं और प्रोग्राम को सुनते ही रहना। प्रोग्राम में तकरीबन 1 बजे से कुछ लोकल नगमे बस पेश किया जाएगी, लोकल गाने बस पेश होगा। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक जरूर प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना।

पूरे अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

खान और स्नेहा पद की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एस बी एस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। चले हम आपको ले चलते हैं रूप कुमार राठौर की ओर, मिस्टर सिंह एंड मिसेस मेहता फिल्म का नाम है।

कुमार राठौर की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब के बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

पेश की जरिए ये गाना उदित नारायण और अलका जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.net उसी वेबसाइट की जरिए हमारा ये प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश होगा तो जरूर रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं पहला गाना की ओर। एक चटनी गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा

सुना और काफी पसंद किया है। चलिए आपकी बार रवि सिंह एंड सुनील रामसुंदर प्रोग्राम में होगा आज की इस रविवार की दोपहर का प्रोग्राम में।

रविवार की दोपहर का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। इरफान होगा और इरफान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

तभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। मौसम आज का बदली बदली सा मौसम, बादल छाया हुआ मौसम है और कहीं कहीं रिमझिम बारिश भी हो।

गाना जो आपने सुना जानी चमन शोला बदन और उसके बाद रात के हम सफर रेडियो वेस्ट में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 14 मिनट ओवर 1:30 स्टूडियो टाइम हो चुका है।

सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों 8 मिनट बाकी है 2 बजने में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। DAB प्लस रेडियो के जरिए मौतगार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर और आज की लोकल गाने की खास प्रोग्राम का एक

ग्लेन रामबाली के जरिए प्रोग्राम आप सुनते ही रहना। 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुछ गाने आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है नई आवाज में, नई संगीत में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए प्रोग्राम अभी जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। एक काफी खूबसूरत गाना होगा जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जरूर आप सुनते ही रहना।

हमारा आज की प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है और इसी खूबसूरत प्यार भरी गाना के साथ हमें इजाजत उड़ा गया दीजिए। आज शाम में 6 बजे एक बार फिर से मिलूंगा मृत्यु समाचार दुख की खबर लेकर के। मत भूलना 3 बजे से 2 तक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी ग्लेन रामबाली के जरिए। मैं आप सभी सुनने वालों से मिलूंगा कल सुबह 7 बजे प्रोग्राम लेकर के, लेकिन आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार आप जरूर

किशोर कुमार के वास में अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग नंबर। ओपनिंग नंबर हमारा हिस्सा की प्रोग्राम से मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन। बस सुनते रहना यहाँ से हमारा हिस्सा की प्रोग्राम ओ फॉर रेडियो SBS।

किशोर कुमार के आवाज में अभी आप सुन रहे थे और अब की बात मोहम्मद रफी साथ में लता मंगेशकर के आवाज में

मोहम्मद रफी साथ में लता मंगेशकर के पास में। अभी आप सुनते प्रोग्राम से अनुराधा पल्त वल साथ में, मंगल सिंह के पास में सुनते रहना।

अनुराधा पौडवाल साथ में, मंगल सिंह के वास में भी आप सुन रहे थे कि काली तेरी चोती पारांदा तेरी लालनी। सुरेश वत्कर और साथ में लता मंगेशकर के अपने अपने से लगे हमें।

इसी नंबर के बाद सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फरके से फमासी और उसके बाद में बैठक गाना, बैठक गन हंगामा प्रोग्राम ओ फॉर रेडियो एसबीएस

10:05 इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है, 5:03 बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS, और वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम।

0: रहेगा।
1: उस्ताद के उस्ताद रामदेव चैतू के वास में अभी आप सुन रहे थे कि कोई रहा है ना कोई रहेगा। रामदेव चैतू के वास में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से दविंदर सिंह शिवनाथ के वास।

0: शांति शिवनंदन के आवाज में सुनते रहना।
1: जमुना से दबलहरे जमुना से
0: के तोरे रुपिया से, तोरे रुपिया से बंगला
1: से
0: छवाई बे

कि सपनवा में गोइया हमें लालता प्रसाद के वास में भी आप सुनते हैं प्रोग्राम से और अब की बार सुनते रहना सनातन सनातन के वास में कि कैसे मुरलिया बजाए गए बालम।

0: और अब की बार सुनते रहना राजू शिव गुलाम के आवाज में
1: हमारे गाँव वाली
0: के हमारे गाँव वाली गोरिया एंटोवा से हैंक महावीर का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से।

राजू सिंह गुलाम के वास में अभी आप सुने थे कि हमारे गवा वाली गोरिया एंथोव से हैंक महावीर का पसंद भी आप सुने थे।

रामप्रसाद राम खिलावन के आवाज में भी आप सुन रहे थे और अब की बात सुनते रहे ना आंद्रे मोहन के आवाज में स्टापोस के रहने वाला प्रेम मताओ का पसंद सुनते रहे ना।

के तारा गिनो सारी रात। आंद्रे मोहन के आवाज में भी आप सुनते प्रोग्राम से तपोस तपोस से प्रेम मताओ का पसंद।

inmiddels 9 minuten over 4. Chaar bachkar is wacht. 9 minuut guzar raha hai. लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम वो भी हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

0: दुनिया में जगदीश प्रसाद उदितराम के वास में भी आप सुन रहे थे रजेश शिव नंदन के वास में सुनते रहना।
1: कौन आया
0: स्टूडियो का तारक नंबर 032-62-66-11 आपको दिया जा रहा है और साथ में फरमाइश इश्तिहार या तो रुचि समाचार के लिए यानी कि हर एक रेडियो के कारोबार के लिए आप तार कीजिए वो भी 24 घंटा लगातार आज नहीं तो कल जरूर से आपके काम आ सकता है।

के पारी करो जिंदगानी। क्रिसवम छेदी के वास में भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से हारमल से सुहिल अक्षय रामादीन का पसंद अभी आप सुन रहे थे।

राकेश यंकरन के आवाज में बस सुनते रहना कि मौसी रसोई हलवा निवखैन से रेक झिनो का पसंद सुनते रहना।

अर्ज पर जब रुके मेरी आका तो ये गायब हुआ हक में मेरी मौला, तो ये गायब हुआ।

ऑफिशियल हीरा के वास में भी आप सुनते शैलेश रमदीन का पसंद भी आप सुनते प्रोग्राम से।

रकीब वागिद हुसैन के आवाज में भी आप सुनते प्रोग्राम से ऐसे छे का वक्त सुनते रहना प्रोग्राम से रुचि समाचार सुनते रहना प्रोग्राम से वो भी ठीक छे का वक्त पर

सुनील राम सुंदर के आवाज में भी आप सुन रहे थे राउती राबरो के आवाज में सुनते रहना रोटरडम से सीला की पसंद

0: रामदेव चैतू के पास में भी आप सुनते के हो प्रीतम प्यारे तू कहां। डॉयचलैंड से जेन और साथ में लाल सेल का पसंद तभी आप सुनते हैं।
1: Reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

inmiddels 6 minuten over 5. 5 बजकर इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है. बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम लाइव के जरिए ओवर रेडियो SBS.

महेश रेखा के वास में सुनते रहना कि जब से देखा मैं तुझको मैं दीवाना हो गया। महेश रेखा के वास में मत भूलना, ठीक 6 बजे सुनते रहना प्रोग्राम से मृत्यु समाचार, मृत्यु समाचार सुनते रहना, वो भी ठीक 6 बजे पर।

0: मैं तो तेरी दीवाना हो गया जब से देखा मैं तुझको। महेश रेखा के वास में भी आप सुनते बेस्ट लिसनिंग बॉलीवुड रेडियो स्टेशन चरित्र केंद्र से राजेश शिव नंदन के वास में सुनते रहना।
1: दिल ना लगे दिलदा
0: कि जब दिल ना लगे दिलदा
1: हमारी गली आ जाना।
0: सुरीनाम सुरीनाम न्यू निकेरी से रामोन ज्वाला प्रसाद का पसंद सुनते रहना।

0: ting ting
1: knock your table, knock your ting.
2: Sundar Popo, आवाज में पुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, पितरक से बनवारी का पसंद सुन रहे ना।

कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, सुंदर पोपो के आवाज में भी आप सुन रहे थे। इतरेक से बनवारी, बनवारी का पसंद भी आप सुन रहे थे।

0: आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं।
1: ला ला ला ला,
0: लेकिन उससे पहले सुनते रहना रामदेव चैतू के पास में
1: ला ला ला ला ला ला,
0: के जिंदगी है क्या उड़ती हुई हवा।
1: ला ला ला ला,
0: रॉबी जियालाल का पसंद सुनते रहना।

0: रविंद्र भोला सिंह के आवाज में के हिलाओ बोरे बलमा,
1: हिलाओ बोरे बलमा तू धीरे धीरे हिला,
0: के धीरे धीरे धीरे धीरे हिलाओ मोरे बलमा, रविंद्र भोला सिंह के आवाज में।

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। वैसे भी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फॉर केस फार्मेसी और उसके बाद में प्रोग्राम से मृत्यु समाचार और उसके बाद में आज आंसली के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमुजर ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। देनहाग शहर से समस्त दुखित परिवार सतीश और हरप्रीत राम प्रसाद और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बुधवार 22 तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त 79 साल नेखनन सुफंतख साल की आयु में सतीश राम प्रसाद के फुआ, हरप्रीत राम प्रसाद के फुआ सास, दो लड़कन सोहम और स्वर के आजी, देनहाग खैस्तरन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर के पत्नी थे। अर्थी सोमवार 27 तारीख जुलाई मानदाग सुली स्मेडक्स ओम क्वाटफोर द्री क्रेमेटोरियम इपन होफ होफलान नंबर 18 डेल्फ शहर में डाक क्रिया की जाएगी। आरनहेम शहर से समस्त दुखित परिवार राम प्रसाद और बधाई और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। बाईस तारीख जुलाई सुबह 4 के वक्त नेखनन सुफंतख 79 साल की आयु में सुदेश बधाई के फुआ सास, मीला राम प्रसाद के फुआ, अंजलिना बधाई के नानी, अश्विन भान सिंह के ननिया सास, देनहाग खैस्तरन वेख के रहने वाली एर्ना सुशीलावती राम प्रसाद की मृत्यु हो गई है, जिन्हें लोग एर्ना के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय सुखराम जयराम जीबोत ब्लाका किशोर की पत्नी थी। अर्थी मानदाग सुली सोमवार 27 तारीख जुलाई स्मेडक्स ओम क्वाटफोर द्री क्रेमेटोरियम इपन होफ होफलान नंबर 18 देनहाग शहर में दाह क्रिया की जाएगी। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 9-6-49-46-44-44 और दूसरा तार की नंबर है 9-6-85-28-30-01। एर इस खेन बैठक अन हाउस निवास स्थान पर बैठक नहीं है। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिन में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिन में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई।

0: Churakje du mera, guria chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal en Mol Malik en Anoop Malik en kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyar Te Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
2: प्लीज।
1: थैंक यू।
3: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक। हाँ वादा फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

रेडियो बेस के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहार।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज़ में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज़ में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

फिल्म निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, इस खजों दूर जुबेन नोटियाल दे दी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेर्दर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा, ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम्त लीजिए मितवा।

ये बेखुदी दीवानगी आउट द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। एन खसाउदुर जुबेन नौटियाल कोमत होने लगा आउट द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम अ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन इट इज अख्तियार दूर विवेक ओबेरॉय एंड ऐश्वर्या राय दी तैयार वारस आर डेट। Uit de film Woont het komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं